थाई उछिंदा हुदा इसा रात दिउसे हफ्तार महीना बनी थाई हुना ने काम गर्दा बेला बीते को पनी नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम बैंड में तब लोग साथ में गहार बात हो मुंह पत्र प्रसाद साहब कोटा आज हो विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 2 तारीख श्रावण 17 गते आईतवार चौथी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी

सारी छयान राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित का